प्राप्त होए। खेम संत शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चत

कार्यशन ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर त्याई अनदिन

0: जन नानक सुख कर आया, बिघन बिनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पै सब पावन, जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर सज बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, आप वडभागे हो जो शाम के दीवाना विच खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे हाजरियां भर के सतगुरु जी की पावन बाणी सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन, सब की हाजरी अपने चरणों के प्रवान करन जी, सब नू चढ़दी कला सेवा सिमरण दियां दातां बख्शिश करके निवाजन। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज शाम दे दीवाना विच गुरु घर दे सेवक स्वर्गवासी सरदार गुरिंदर सिंह, सत्कारयोग बीबी बलजिंदर कौर उपल, तिन्हां दे सपुत्तर सरदार शरणजीत सिंह उपल, बीबी सुखवीर कौर उपल नूं सतगुरु जी ने बेटी सरबत कौर दी दात बख्शिश की है। सो सेवक परिवार वालों, समूह उपल परिवार अते बच्ची दा नानका परिवार कालों परिवार वालों सतगुरु जी दियां इन्हां बख्शियां होईयां दातां दा शुकराना करदिआं होइआं पावन बाणी श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ गुरबाणी कीर्तन अते गुरु के लंगरां दी सेवा बड़ी श्रद्धा प्यार भावना दे नाल निभाई जा रही है। आप संगतां सेवक परिवारां दे सदे पत्तर ते पहुंचे हो, आप सारियां संगतां दा समूह परिवारां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। सारियां नूं जीओ आया जी, सतगुरु जी कृपा बख्शिश रहमत करन, बेटी सरबत कौर उपल दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करन। सेवक परिवारां वल्लों गुरु के लंगर भी सजे हुए हन, समा बन ते आप संगतां ने गुरु के भी लंगर छकन की कृपालता करनी जी। आओ शाम दे दीवाना विच पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। सत्कारयोग भाई गुरनाम सिंह जी रुद्रपुर वाले अते उन्हां दे रागी जथे पासों आप संगतां दे चरणां विच बेनती है कि गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे बच्चियां दा जो सालाना गुरबाणी कंठ मुकाबला हुंदा है वह 24 अक्तूबर नूं होवेगा। ऑनलाइन जा के आप संगतां नूं बेनती है कि अपने बच्चियां नूं वध तो वध इस मुकाबले वास्ते रजिस्टर कराओ तां जो बच्चे इस गुरबाणी कंठ मुकाबले दे विच भाग लैन। 24 अक्तूबर नूं इह बच्चियां दा गुरबाणी कंठ मुकाबला होवेगा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पमन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत तेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत ननायक तोही सहस पद विमल नानक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिसदै चानण सब मह चानण होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत तिस भावै सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोगित मनो

संसार विकार संसय मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियाए रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन हे बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे।

संत उबार गुनी मन गौरे पास पशु नग नाग नरातप सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल कह नहीं कर्म विचार दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हर नारायण नरपत नमस्कार है

काठी तोए जलावह बसुदा खोद करह दोए चूले सारे मान सुखावह ओए पापी सदा फिरहे अपराधी मुख हो अपरस कहावह सदा सदा फिरहे अभिमानी सगल कुटुंब डुबावह

कथना कथिना वैतोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहि जुगा जुगंतर काहि काहि हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार वाखै मंगह देह दे दात करे दातार फिर कै गै रखिया जित दिसै दरबार मुहाउ के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यारे मृत वेला सच नाउ बड़ियाई विचार करमिया वै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वह जानिया सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता ना हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हव जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जे तस भावा बिन पाने के नाए करी जे तीसर ठूपाई वेखा बिन करमा के मिलाय लई मत विजर तंजवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाही सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे चारे अर जा वरद सुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोई चंगा ना रुखाए कह जस कीर्त जग ले जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दी दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवलो आकाश सुनया दीपलो पाताल सुने पोह न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर ब्रह्मैन सुनया मुक्सला हनुमन सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोष ज्ञान सुनया अठ सठ का इसनान सुनया पड़ पड़ पावह मान सुनया लागै सह ध्यान नानक भगतां सदा विगास

गावन साध विचारी। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन सुरगामा छपाई आले, गावन रत्नों पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले। गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे, गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे। से तुदनू गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है, भी होसी जाए ना जासी। रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी, माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहण रजाई। मुंदा संतोख सरमपत झोड़ी ध्यान की करहै विभूत, खिंठा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। हुआई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीता, देश तसया दे स्वादा नीला नादा नाथ। जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण, कटकट वाजह नाद। वापनाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध।

जिन कै राम बसै मन माह तिथै भगत वसै के लोग करह नन सच्चा मन सोई सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भन जे को कथा ते अंत नंत तिथै लोह लोह आकार जेब जिब हुकम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पावहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलाव अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसा

है, ते है, पे है, अजीत है, भीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, वर्ण है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूत है, अचंज है, अमीकर फीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है,

देवान देव उपमा महान इंद्रान निर्बालान बाल रंकान रंकालान कालन भूतंगा पहपंग गतमित पार कुंगन उदार मंगन प्रणाम निरपैन काम आत दुत प्रचंड मितगत अखंड आलिस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणा डंडन बढ़ चाचरी शंत प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारि हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथि से आदि से अदृश्य कृष्ण भगवती शांत प्रसाद कहते किया शिज दिश किया पिज पिसा किया गन कर मैं किया पंच पर मैं किया पिज लोक कह के आदित सो कह के अवधूत बारने के विभूत करने के राजन प्रभाए के धर्म तो जाहे के आशोक बरने के सर्वा परने की जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय एक ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनपहुन उपे के आधा देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने के अधीन है कि रोजी रजा के रही मेरे हक है कि पाक भी ऐब है कि गैप लोग ऐब है कि अफुल गुनाह है कि सांसा है के कारण कुनिंद है करोजी देहांद है किराज करीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पहुण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाओ कि सर्वत्र पहाओ कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधानी है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पहन है कि सर्वत्र मान्य है

सर्वं सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शंत्वै प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकाम्य त्रिभंग नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात

नाद खल खंड ख्याल गुर भरे अकाल कर कर प्रणाम चित चन नाम अनिशेज गात अज जना बातन चंज गात नरन बातन टुट पंडारन ठट पारा डीठ धर्म आत ठीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शंस त्वै प्रसाद करुणा ले हैं और काले हैं खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कलकारन है सर्व उबारन है त्रैत के तरन है जग के करन है मनमानी है जग जानी है सर्वं पर हैं सर्वं कर हैं सर्वपास हैं सर्वनाश हैं करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंड से कलखंड से

करुणा कृत है, अग्रता कृत है, धरणी कृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, निर्नायक है, खलकायक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, निपनायक है, सर्वपायक है, पापंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जपजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात। नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकार नमो ते ते जे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सुताम संसात रूपे नमो परम तत्त्वं अतत्त्वं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे।

अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय अपहु अपुवजु अनास अगास अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म परमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेपूते

मत मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे। भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बेचारे। ते पहे तो कहा पै भूपत अंत कौ नंगे ही पाए पधारे। जीत फिरे सब

जाचक अनेक सो एक देवैया। दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे। पुन्न प्रताप

जियस तो तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार

हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अठ सहस पण तीन के जय भादर सुदी अष्टमी रविवार तीर्थ द्रुव ग्रंथ सुधारा सवैया।

आप षड सदा रहे परणे, गुर बिनियवर न जाने कोए, कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए।

बाणियां सिरबाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारी पाणी। कह नानक सदा गाव हो सची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तक कच्ची सतगुरु बाजो।

0: मानवानां तेरे संग सहाई तै केवल नाम संग तेरे चले हर को नाम के नमाहे उधारी
1: कर्त नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे।

0: कर ठाके
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके
0: जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जे प्रसाद आपूखन पहरी जे
1: मन ते सिमरत को आलस की जे
0: प्रसाद हसव अस सवारी
1: मन ते प्रभु को कबू ना बिसारी
0: जे प्रसाद बाग मिलक तना
1: राख प्रोए प्रभु अपने मना
0: तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सत्य से त्याई
0: से त्याई जो एक अलख है
1: इया हुआ नानक तेरी रखे
0: प्रसाद कहे पुन बहुदान
1: मन हाथ पैर का तिसका ध्यान
0: प्रसाद तू

0: जय प्रसाद सुख सहजे वसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है
0: जय प्रसाद पूरन फले
1: जय प्रसाद परम गत पाव है
0: जय प्रसाद सो सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर गत ला

0: ज्ञानी के मन होए परगास।
1: जैसे तर ऊपर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत समान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा।
1: मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पय।
1: नानक जिन प्रभ आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना।
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया।
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।
1: ब्रह्म ज्ञानी की चेष्टा अमृत वर्षी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का पोजन ज्ञान।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास।
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा।
1: ब्रह्म

भगत कीर्तन संग राजे सब उपर होवत कर पाल नानक हो वैष्णो परम गत पावे।

0: मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: पार ब्रह्म का निवास है
0: जिसका नाम सत राम दास
1: राम किस नगरी आया
0: दास संत भाई

0: कबहु सरकी हो तरवार,
1: कबहु होए बहे बड़ राजा,
0: कबहु भिखारी नीच का साजा,
1: कबहु अपकीर्त में आवे,
0: कबहु भला भला कहावे,
1: जो प्रभ राखे तिवही रहे,
0: वर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कबहु होए पंडित करे विख्यान,
0: कबहु मोहन तारी लावे ध्यान,
1: कबहु तट तीर्थ स्नान,
0: कबहु सिद्ध साधक मख ज्ञान,
1: कबहु कीट हस्त तंग हुए जिया।

0: बली
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जाने में जो वनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत्र
1: आपस को कर्मंत कहावे
0: जन्म मरे वो जोर परमावे
1: धन भूमिका जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधान
1: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान किया मुक्ता के सुख पावे
1: धनवंता होए कर गर्भावे
0: ऋण समान का संग न जावे
1: लश्कर मानक ऊपर करे आस
0: फल पीतरता का होए विनाश
1: दे आप जाने बलवंत
0: खेल में होए जाए पसमंत
1: बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: और प्रसाद जाका मिटे अभिमान
0: सो जन नानक दर गए परवान
1: कर्म करे हो तारे
0: श्रम पावे सगले बस तारे
1: तपस्या करे

0: जाए।
1: कृपाते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे।
1: कटे लख उठतावे
0: तृप्त नावे माया पाछे पावे।
1: विख्या के करे
0: मैं तृप्तावे कब कब मरे।
1: बिना संतोष नहीं कौ राजे
0: स्वप्न मनोरथ मिलते सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बट भागी किसे प्राप्त होए।
1: करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप।
1: करावन करने हार
0: इसके हाथ का विचार।
1: ऐसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप प्राप्त होए।
1: किचकिनो से अपने

0: सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा वियोग
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा पवित्र
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
0: संत के दुखी को दान लागे
1: संत के दुखी को सब त्यागे
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा भिखारी

0: सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए,
0: संत के दुखी की पुजे ना आसा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत के दुख ना त्रिष्ठा कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: कितना मेटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर दिस के ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,

0: मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: श्रवण हर कथा
0: हर तरके नानक उजर मथा
1: गीते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए
1: नाम जो करे विचार
0: से तनवंत गनी संसार
1: मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जान्यो ते सुखी
1: को एक एक पहचान
0: ए तुत कियो सो जी जाने
1: संग जस का मन मान्या
0: नानक तिने निरंजन जान्या
1: प्रसाद अपना आप बुझे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: संग हर हर जस कहत
0: सत रोग ते वर्णन रहत
1: कीर्तन केवल बखे आन
0: गृहस्थ में सोई नरवार
1: जन की आशा
0: जिसकी कटिए जम की पासा
1: ब्रह्म की जस मन भूख
0: नानक तिसे न लागे दुख
1: हर प्रभ मन चित आवे
0: सो संत सेला नहीं डरावे
1: अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सीजिया
0: गुर प्रसाद दासा रूजिया
1: तब सब किश मूल
0: नानक सो सुखम सोई अस्थूल
1: जन्म ना कश मरे
0: आपन चलता आप ही करे
1: आपन जान दृष्ट अन दृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आप सगल मह आप
0: अनक जुगत रचताप थाप
1: नाही किश खंड
0: तारन तार्यो ब्रह्मांड
1: पुरख परताप
0: आप जपाए ता नानक जाप सगल संसार उदरे तिन मंत
1: सेवक सगल उदारन
0: प्रभु सेवक दुख विसारन
1: मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द पए निहाल
1: सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे बड़ भागे
1: जपत पावे विश्राम
0: नानक निरपुर को उत्तम करमान
1: करे सो प्रभु कै रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: आए होवे तू होए
0: करने हार पहचाने सोए
1: का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सा तैसा दस्ताना
1: उपजे तिस माहे समाए।

0: सदा हर जाप
1: अवनाशी प्रगापे आप
0: आपन किया कछु न होए
1: ये सो प्राणी रोचे कोए
0: इस बिन नाही तेरे किछ काम
1: भगत नानक जापे कहर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह

0: केवल प्रधान
1: सत सत जाकी वाणी
0: सत पर्त समय समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करने निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए तिसे सफली
1: सत नाम प्रभु का सखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जान जाके हृदय प्रवेश
1: जय जय कोए
0: नाम जत ताकी गत होए
1: नाम

0: कछ परम
1: सियान पलिया ना जाइए
0: नानक ऐसा गुरबड़ पागे पाइए
1: सबल दर्शन पेखत पनीत
0: पर सर जल गत ने

0: संत जिन जनम मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम आधार
0: और पासा मीत विसार हो
1: चरण कमल रित में और धारो
0: करण कारण सो परम सम्राट
1: दृढ़ कर गावो नाम हर बात
0: संचो हो।

0: जब अकार हो कशना दृष्टिता
1: पापों ता कहते होता
0: हरी अपन सन समाद
1: ता बैर विरोध के संग कमाद
0: का वर्ण देह ना जापत
1: तब हरक सोको किसे व्यापत
0: अपन आप आप पर ब्रह्म
1: तब मोहा किस होवत परम
0: खेल आप कर भतीजा
1: नानक ने हार न दूजा
0: उपत प्रभु केवल धनी
1: तब बंद मुक्त को किसको घनी
0: एक हर अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग को कौन अतार
0: गुण प्रभु सह सुभाए
1: तब शिव सख्त कहो के तठाए
0: आपे आप अपनी जोत तरह
1: तब कवन निडर कवन का कर
0: चलत आप करने हार
1: गान कथा करे अगम अपार
0: सुख अपन आसन
1: तै जन मन को का विनाशन
0: करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: अवगत अगोचर प्रभ का
1: तब चित्र गुप्त किंच पूछ लेखा
0: नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन वादे
0: अपन आप आप ही जर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही अपर्जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: तै बिन मैल कहो क्या तोता
0: है निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तै कौन को मान कौन अभिमान
0: केवल जगदीश
1: तै चल शरणागत को कीस
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तै किसे भूख कवन तृप्तावे
0: रावण करने हार
1: नानक करते का नाही समार
0: शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए वाम मित्र सत पाई
0: सर्व कला आपे परवीन
1: तै वेद कतेव कहा को चीन
0: अपन आप आप और तार
1: तव सगन अब सगन कहा विचारे
0: अपन ऊच अपन आप नेरा
1: तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: विश्व रहे विस्माद
1: नानक अपनी गत जानो आप
0: शल अछेद अपेद समाया
1: ऊहा किसे व्यापत माया
0: अपे आदेश
1: तै कौन का नाही परवेश
0: कै एक एक भगवंता
1: तै कौन चिंत किस लागे चिंता
0: अपन आप आप पतियारा
1: तै कौन कथे कौन सुनने हारा नानक आप उसको आपे पहुंचा
0: आप ऋचो पर पंच अकार
1: तै गुण में कीनो विस्तार
0: कौन तै पई कहावत
1: को नरको स्वर्ग बचावत
0: जाल माया जान जाल
1: हमें मोह परम पै पार
0: मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओब ख्यान
0: खेल आप कर दिख
1: खेल संकोचे तो नानक के
0: अब भगत तह आप
1: जय पसरे प्रसाद संत करताप
0: का बहतनी
1: उनकी शोभा उन्हो बनी
0: कौतक करे आनंद चोज
1: आपे रस भोजन मेरी जोज

0: पूरी अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन पेगत उदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: शबल दर्शन सुंदर रूप
0: कान सेवा सेवक परवान
1: अंतर्यामी पलक प्रधान
0: जिस मन बसे सो होत ने

0: हमारी।
1: प्रभु की औसत करो संत बीत,
0: सावधानी का कर चीत,
1: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम,
0: जिस मन बसे सो होत निधान,
1: सर्व इच्छा ताके पूरन होए,
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए,
1: सब ते ऊच पाए स्थान,
0: बहर न होवे आवन जान,
1: हर तन खाट चले जन सोए,
0: नानक जिसे प्राप्त होए,
1: खेम शांत रिद नव निद,
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध,
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान,
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान,
1: चार पदार्थ कमल प्रगास,
0: सब

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

निर्गुनिया रे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेहरबाना, तुम करो पला हम पलो ना जाने।